तो वेलकम बैक, रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले एक ही आपके साथ आज की बातें करूं, सबसे पहले उन्हें विश कर दूं जिनका आज बर्थडे है। सो बर्थडे बेबीज, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और बस दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कदम से कदम मिलाते रहिए और चलते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी जीतना है, हासिल करना है। जिनके लिए आज दिन इसलिए खास है क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी, सो यार एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, आपके रिश्ते को डिसबैलेंस करेंगे और आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के साथ अगर विश्वास का रिश्ता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और जिनके लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

जहाँ इट हैपेंस सुन रहे आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इस बार इट हैपेंस का साथ जो इस वक्त आपके साथ है बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये सुबह आपके लिए बहुत स्पेशल है। वैसे चलिए बात करते हैं अपने गोल्स की। यू नो, हम सबके पास ना एक विश लिस्ट होती है और एक होता है गोल। मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ये होती है आपकी विश लिस्ट। लेकिन पता आपको विश लिस्ट और गोल में फर्क क्या होता है? देखिये, विश लिस्ट सिर्फ आपके दिमाग में होती है। आप उसे कभी भी ना एक पॉसिबल वे के जरिए आप उसे अपनी ड्रीम से सच्चाई नहीं बना पाते। और गोल जो है वो कैलेंडर में होता है। सो अगर आप अपने सपने के आगे कोई डेट नहीं लिखते हैं ना, तो वो सपना सपना ही रह जाता है, आपकी विश लिस्ट ही रह जाता है। तो इसलिए अपने सपने को अगर आप सच्चाई में सामने लाना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे सबसे छोटा ही क्यों ना हो वो स्टेप, बट उठाइए जरूर, ताकि आप अपने गोल की ओर बढ़ सकें। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

क्या कहेंगे, आय हाय, बड़ा ही फेमस डायलॉग है। अगर फेल हो गए तो हमारा दिमाग यू नो हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन आज सताक्षी आपसे एक सवाल पूछती है, अगर आप कामयाब हो गए तो, इस अगर को कभी दूसरे एंगल से देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी आदत है ना नेगेटिव साइड को ही देखने की। यू नो लोग हमेशा आपके रिजल्ट पर ताली बजाते हैं, आपकी मेहनत पर नहीं। तो लोगों की बातें सुनना बंद करिए और अपने काम की आवाज को थोड़ा और तेज करिए। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए ठापंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: ईटीपीसवानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस. अभी हम आ गए हैं गानों की हैट्रिक में. जी हाँ, चलिए मिलकर लगाते हैं गानों की हैट्रिक. तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए सताक्षी लेकर आई है, और आज का ये पहला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं। हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये सफर है जिसे आप हर रोज सुनते हैं रेडियो ब्रिस्तानी पर 88.8 FM। आइए इस सेगमेंट में अभी ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

गानों की हैट्रिक में हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये लास्ट ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो गानों की हैट्रिक के बाद आपसे होने वाली हैं, सो तैयार रहिए उसके लिए। और इस अगले ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। भाई रेंटल बॉयफ्रेंड, इस टर्म को सुना है आपने? हाँ, देखिए ये टर्म जो है इसकी शुरुआत हुई थी जापान से और अब ये इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है। रेंटल बॉयफ्रेंड क्या मतलब है इसका? भाई जैसा कि वर्ड बता रहा है, रेंटल बॉयफ्रेंड मतलब किराए पर बॉयफ्रेंड का मिलना। अच्छा, ऐसा होता था ना कि पूरे ग्रुप में सबके पास अपने बॉयफ्रेंड्स हैं लेकिन एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है और वो डायलॉग मारता था ना कि बॉयफ्रेंड क्या किराए पे मिलता है जो उठा लूं। तो हाँ भाई, अब बॉयफ्रेंड किराए पे मिलता है और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये रेंटल बॉयफ्रेंड आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्दी ट्रेंड चल पड़ा है और इस ट्रेंड के चलते लोग मूवीज जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, रेंटल बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हैं और स्टेटस सिंबल की तरह है ये। लेकिन ये ट्रेंड जब मैं पढ़ रही थी, जापान तो एक खैर अदर लेवल कंट्री है, लेकिन इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यार कहाँ आ गया है सब, किस ओर आज का यूथ जा रहा है, लोग जा रहे हैं। मतलब हम बेसिकली देखा जाए तो स्टेटस सिंबल है ना कि भाई सबके पास है, हमारे पास नहीं है तो हमें भी दिखाना है कि हमारे पास तो है, बट क्या ही यूज है इसका? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। आई डोंट नो कि क्यों ये स्टेटस सिंबल इतना हाई होता जा रहा है हमारा कि हमें रेंटल बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। आपका इस बारे में क्या थॉट है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ हैं आप।

सप्रेस किया जा रहा है, इस मोमेंट को, प्रोटेस्ट मोमेंट को दबाया जा रहा है, वो देखा जाए तो दोनों साइड मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना साइड भी है क्योंकि इसके पहले भी पेपर्स लीक होते रहे, लेकिन बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन मैनेजमेंट में सुधार भी हुआ है इस दौरान, भारत की बात करूं तो। उसके बाद एकदम से इस तरह का आंदोलन आना, डेफिनेटली स्टूडेंट्स की आड़ में बाकी की पार्टीज अपना मुनाफा तो कमा रही हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो जनता का सेवक होने का मतलब ये था इस वक्त, इस इतना आंदोलन बढ़ता ही नहीं आई गेस, अगर नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स के बीच पहुंच जाते। इस मोमेंट में कई नेता शामिल हो चुके हैं, कई अभिनेता अभिनेत्रियां शामिल हो चुके हैं, मतलब बॉलीवुड भी इस मोमेंट में खड़ा है, कई बड़े लोग शामिल हो चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग अगर इस मोमेंट का हिस्सा बनते, हिस्सा ना बनते, जाकर बात करते स्टूडेंट्स से, तो आई मीन पार्टीज को, जो अदर पार्टीज हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता और शायद ये हालत नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा काम किया है, उन्होंने बच्चों को पर डंडे चलवाए, उन्होंने बच्चों को मरवाया और उन्हें सप्रेस करने की, उन्हें दबाने की कोशिश की, जो आई थिंक, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आई गेस ये गलत है। आपकी राय क्या है हमारे साथ बांटिएगा। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए ठापंस में।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंजन ओवाने एमते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो, बॉलीवुड विच अक्सर ए मनिया जाता है कि बॉक्स ऑफिस की सफलता सिर्फ 100 करोड़ के बजट ते वड्डे सुपरस्टार्स की स्टार पावर ते निर्भर करती। हालांकि 2010 तो 2018 के दहाके ने इस मिथ नू पूरी तरह दे नाल तोड़ दिता। इस दौरान कई अजिहां फिल्मां आईयां हैगियां ने जिन्हां विच ना तां खान वर्गे वड्डे नाम सी ते ना ही शानदार विजुअल इफेक्ट्स दा तामझाम, फिर भी अपनी मजबूत कहानियां दी वजह नाल ए स्लीपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित होईयां। विकीडोनो तों लैके स्त्री तक इन्हां बहुत सारिया घट बजट दिया फिल्मा ने साबित कर दिता है कि जब कंटेंट ही असली सुपरस्टार होवे ता घट इन्वेस्टमेंट विच भी इतिहास रचिया जा सकता है। इन्हां बारे ही तुहानूं दस्सदी आं कि कि फिल्मां हैगियां ने एक एक करके, पर पहला सुनो एक गीत।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हाँ जी जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। इना फिल्मा दे काट बजट ते वड्डे स्टार कास्ट तो बिना वाली फिल्मा दे विच सब तो पहला नाम हुंदा हैगा जिहड़ा वो है जी फिल्म है फस गए रे ओबामा। ये फिल्म 2010 दे विच आई सी। बजट फिल्म का महज 3-4 करोड़ से तो कलैक्शन इसने 14 करोड़ कर ली सी। इस दहाके की शुरुआत विच डायरेक्टर सुभांशु कपूर ने एक डार्क कॉमेडी पेश की सी। ग्लोबल मंदी की पृष्ठभूमि से बनी इस फिल्म विच कई बड़े स्टार्स नहीं सी। रजत कपूर और संजय मिश्रा वर्गे टैलेंटेड एक्टर सीगे पर इसकी राइटिंग इन्नी वधिया सी कि दर्शकों के दिल नूं छू गई। फिल्म ने ना सिर्फ अपनी लागत वसूली बल्कि मुनाफे दे मामले विच कई वड्डे बजट दियां फिल्मां नूं भी पिछे छाड़ दिता सी। डबल ट्रिपल कमाई करकी सी क्योंकि एक्टर बहुत ज्यादा वधिया सी ते कंटेंट ही किंग सी।

House. हां जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसारी वन सनो वाले एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन आज से बने होने हैं। तो फिर देखो 2012 तो हूं 2013 दे विच जंप करते हैं सीधा। तो 2013 दे विच आई सी आशिकी 2 बजट 9-12 करोड़ दे विच करता सी। कलेक्शन इसने 100 तो उपर दी कर ली सी 100 करोड़ जी हाँ। जब मोहित सूरी ने आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के नाल आशिकी 2 बनाने का फैसला किया सी ना तो किसी को उम्मीद नहीं सी कि इस साल की सब तो वड्डी हिट फिल्मा दे विच एक बन जाऊगी। फिल्म के म्यूजिक अरिजीत सिंह की आवाज ने नौजवानों के विचकार अजिहा क्रेज पैदा किया कि 12 करोड़ की फिल्म ने 100 करोड़ तो ज्यादा तकरीबन 110 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया सी। अज भी घट बजट की रोमांटिक फिल्मों के विचों एक मनी जानती है। मिसाल वजो देखी जाती है कि इसका कोई तोड़ नहीं है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of us.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, क्या हाल है आप सबका। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर शनिवा के साथ। और सबसे पहले आपको हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ, फ्राइडे आ गया है, जिस दिन का आपको हमेशा इंतजार रहता है। मतलब मंडे शुरू होता है और आप फ्राइडे का इंतजार करना शुरू कर देते हो, तो वो वाला फ्राइडे आ गया है। मतलब वीकेंड का आगाज जो है बस होने ही वाला है। मैं कहती हूँ कि इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना तो बनता है, तो आइए फ्राइडे के जबरदस्त से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हेल्दी रिचुअल के साथ, क्योंकि हेल्दी रहना तो जरूरी है। मजे करने के लिए भी हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फिर चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते बिना देर किए एक मजेदार से गाने पे के साथ शुरुआत करेंगे, जो आपको झूमने पे मजबूर करने वाला है। और ये गाना है बरसो रे मेघा मेघा। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, तुम्हारा गाना जो है वो हमारी मौसम की थीम के साथ जा नहीं रहा है। अरे नहीं जा रहा है, पर फिर भी ये गाने में एक बात है जो कि मैं चाहती हूँ आप उस वाइब में खो जाओ। जी हाँ, क्योंकि ये गाना जो है इसका म्यूजिक AR रहमान ने इतना प्यार से बनाया है, इसके बोल इतने अच्छे हैं, और ऊपर से अगर आपने इसमें ऐश्वर्या राय को झूमते हुए देख लिया ना, फिर तो आपको बारिश से इतना प्यार हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कि बारिश होती रहे तो ही मजा आएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले सुनते हैं यही गाना बरसो रे मेघा मेघा, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, अब जरा मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मौसम की, आज के टेम्परेचर की। 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 21.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 19.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात की बात की तो 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, और जो सूरज आपके लिए चमकता हुआ आपको दिखा था, वही रात को आपको चांद भी जो है वो वैसे ही खिलखिलाता हुआ नजर आने वाला है। एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। जी हाँ, एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। और अब अगर कल की बात की जाए, यानी कि सैटरडे और संडे की बात की जाए, क्योंकि वीकेंड पे मौसम कैसा रहने वाला है ये जानना जरूरी है ताकि हम अपनी प्लानिंग कर पाए। बाहर आप बहुत अच्छे से निकल पाओगे, मतलब मुझे कोई बारिश के चांसेस यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं दोनों ही दिन। जी हाँ, 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहना है दोनों ही दिन, और खिलखिलाता हुआ सूरज जो है, वो सूरज की रोशनी जो है वो भर भर के विटामिन डी जो है वो आपको मिलने वाली है। तो बाहर निकलिए, ये सनी डे होने वाला है, अच्छे से इस खूबसूरत से दिन का आनंद उठाइएगा। ये जो वीकेंड पे दोनों ही दिन है, आप दोनों ही दिन बाहर निकल सकते हैं। आपको बारिश से डरने की जरूरत नहीं है कि बारिश आके आपके प्लान्स को जो है वो खराब कर सकती है। तो प्लानिंग कीजिए जो कि आप बाहर जाके कर पाए एक्टिविटीज। जी हाँ, इसी के साथ ये है मौसम की बात। अब जरा चलते हैं सीधा ऑफ कोर्स एक बढ़िया से जबरदस्त से गाने की तरफ।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਸੈਂਸਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11th ਆਫ ਆਗਸਟ 2026. Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
3: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है तो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी बनती है और वो है आपके फेवरेट गाने। जी हाँ, जो कि आप हमारे इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर सकते हो, फरमाइश कर सकते हो और मैं यानी आपकी आरजे निव्या उन गानों को आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि आप फोन उठाएंगे तभी तो नंबर डायल कर पाएंगे और तभी तो अपने फेवरेट गानों को हम तक पहुंचा पाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर है +91 8288 8 7 1 7 0 1। आई रिपीट, +91 8288 8 7 1 7 0 1। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश और हमें है बेसब्री से इंतजार आपकी फरमाइश का। आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, किसी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं एंड आई एम गोना हेल्प यू विद दैट। सो जल्दी से आ जाइए यहाँ पर हमारी तरफ से एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो फ्राइडे आ गया है और फ्राइडे आ गया है कि इसका मतलब यही है कि भाई मूवीज रिलीज होने वाली है। तो सबसे पहले बिना देर किए बात करेंगे क्या क्या आपको इस हफ्ते थिएटर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी छोड़ू। जो भी चीजें आप देख सकते हो इस वीकेंड, एंटरटेन हो सकते हो जिन चीजों से, आई एम गोना टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन मूवीज से जो कि आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख पाओगे। सबसे पहले जो है वो ऑफ कोर्स है दुल्हनिया ले आएगी। जी हाँ, दुल्हनिया ले आएगी जो है वो मूवी है खुशाली कुमार की, महेश मांजरेकर की। इट्स अ फन मूवी, इट्स अ फनी मूवी, कॉमेडी ड्रामा फैमिली। मतलब एक लड़की है जिसको शादी करनी है और शादी के लिए दूल्हा नहीं मिल रहा है, तो मतलब सारा सेटअप हो चुका है लेकिन दूल्हा ही नहीं है। फिर किसी दूल्हे को किडनैप किया जाता है, फिर उसे दूल्हा बनाया जाता है, ऐसा ही कुछ ट्रेलर से मुझे समझ आया। सो आप ट्रेलर देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप इसे देखना चाहते हो। बट द मूवी आई एम गोना रेकमेंड इज धमाल 4। नाउ धमाल इज अ वेरी वेरी वेरी क्लोज मूवी टू माई हार्ट। वाई? क्योंकि धमाल जो है उससे हमारे बचपन की और हमारी फैमिली, वो जो एक साथ बैठ के जो कुछ मूवीज होती है ना देखने वाली, वो वाली यादें जुड़ी हैं। सो मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं इस मूवी को जो है वो देखा करती थी अपनी फैमिली के साथ, अपने कजन्स के साथ, और हमें बहुत ज्यादा मजा आता था। तो ये मूवी वैसी है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बैठ के मिल के देख सकते हो एंड यू आर गना हैव सो मच फन। जी हाँ, सो धमाल का 4th पार्ट आ गया है और कास्ट जो है फिर से वही है। जी हाँ, रितेश देशमुख, अजय देवगन, अरशद बारशी और जावेद जाफरी, और उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो कि धमाल सीरीज में पहले से आ रहे हैं, और कुछ नई कास्ट भी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, इसी के साथ अगर आप थोड़ा मतलब एक नॉर्मल मूवी देखना चाहते हैं जो कि आपको एक्शन थ्रिलर सब कुछ सर्व करे, देन अल्फा इज फॉर यू। जी हाँ, आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की मूवी को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। मूवी जो है वो ठीक काम कर रही है, उतना अच्छा काम नहीं कर रही है जितना उसे करना चाहिए था, बट ओके ओके काम वो कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग उस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, क्या आपने मूवी देख ली है ऑलरेडी, क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं तो शायद आपने देख ली हो, जरूर बताइएगा। इसी के साथ एक मूवी जो कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है और वो है मैं वापस आऊंगा आप सबके लिए। जी हाँ, मैं वापस आऊंगा और ये प्यारी सी मूवी है एक लव स्टोरी के बारे में, जो कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल करने वाली है। इवन अगर आप उन लोगों में से हो जिनको रोना नहीं आता है, जब भी कोई वो इमोशनल सीन देख लें किसी मूवी में, तो आपको तब भी इसमें काफी इमोशनल आप फील करने वाले हो। वाई? क्योंकि आप जब ट्रेलर देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा, और अगर आपने मूवी देख ली तो सब सब सब इस मूवी को रेकमेंड कर रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा एक मूवी है जन नेता। जी हाँ, अब जन नेता जो है वो एक ही ड्रामेटिक मूवी है, क्योंकि इसमें जो एक्टर है विजय, वो जन के नेता के तौर पर जो है मतलब पॉलिटिशियन के तौर पर जो है वो किरदार निभा रहे हैं। कैसे उनका पॉलिटिकल करियर बनता है, शुरू होता है, नहीं होता है, क्या होता है, सारी की सारी चीजें आपको इसी में पता चलेगी। बट द थिंग इज, बट द थिंग दैट मेक्स दिस मूवी इंटरेस्टिंग इज कि जो विजय हैं, जो कि इसमें एक्टर हैं, वो ऑलरेडी रियल में पॉलिटिशियन बन गए हैं। जी हाँ, मतलब उन्होंने मूवी की और अब वो रियल में पॉलिटिशियन बन गए, और पॉलिटिशियन भी वो एक सीएम बन गए हैं तमिलनाडु के। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। इमेजिन यू आर डूइंग अ मूवी एंड यू रियली इन ओरिजिनली बिकम्स अ पॉलिटिशियन। आई मीन इट्स अ फ्लेक्स, राइट? सो या ये सारी बॉलीवुड और हिंदी मूवीज जो है, और हिंदी के साथ साथ जो है इंडियन मूवीज जो है वो आप देख सकते हो अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। नाउ आई एम गोना गो टू ऑफकोर्स हॉलीवुड और दूसरी मूवीज की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और जबरदस्त सा गाना।

0: चलिया चलिया चलिया रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी चलिया चलिया चलिया ओ चलिया।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
12: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हो, थिएटर्स में जाकर देख सकते हो इस वीकेंड, क्योंकि ये वीकेंड पूरी तरह से सनी होने वाला है। बाहर निकलिए और अच्छे से जमकर इन विंटर्स में इस धूप को सौकिन कीजिए और साथ में अपनी फेवरेट एक्टिविटीज कीजिए, लाइक गोइंग फॉर अ मूवी और फॉर शॉपिंग और फॉर पिकनिक। You can do literally anything. जी हाँ, तो अब जरा बात कर लेते हैं हॉलीवुड मूवीज की। जी हाँ, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज के बारे में, इंडियन मूवीज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑफकोर्स द ओडिसी। जी हाँ, द ओडिसी के बारे में मैं क्या कहूँ। ऑफकोर्स इट्स अ क्रिस्टोफर नॉलन मूवी और इसमें आपको मेट डेमन, इसमें आपको एन हाथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, चार्ली थ्रोन, लुपिटा न्यांग, ये सब के सब मिलने वाले हैं। और ये मूवी है ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड। जी हाँ, आफ्टर ट्रोजन बोर जो ओडिसियस है वो अपने घर जा रहा है, लेकिन वो घर जाने की जर्नी जो है वो सालों से 10, 11, 12 और 20 साल तक जो है वो तब्दील हो जाती है। और उसी जर्नी को लेकर जो है वो क्रिस्टोफर नॉलन ने ये मूवी बनाई है। अब आप लोग बोलोगे क्रिस्टोफर नॉलन को घर वापस जाने का टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय है, तभी तो उनकी सारी की सारी मूवीज, ऑलमोस्ट सारी मूवीज में जो एक्टर्स हैं वो बेचारे घर ही जा रहे होते हैं। जी हाँ, या दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। Yeah, it's true actually. जी हाँ, अगर आपने ये notice किया है तो। इसी के साथ यहाँ पर एक और movie जो आप देख सकते हैं वो है of course एक horror movie। जी हाँ, इट्स अ हॉरर मूवी एंड उसका नाम है इविल डेड बर्न. जी हाँ, इविल डेड बर्न जो है वो ऑफकोर्स आपको थ्रिलर जो है, हॉरर, सुपर नेचुरल, ये सारे के सारे जॉनर्स जो है वो सर्व करने वाली है. एंड या यू कैन वॉच इट एंड लेट मी नो आपको ये कैसी लगी. अगर आप अपने बच्चों के साथ मूवी देखना चाहते हो तो मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स कैन बी योर चॉइस. जी हाँ, अपने किड्स को लेकर जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, छुट्टियों का आनंद लीजिए और मजे से उनको एक अच्छी सी मूवी दिखाइए. प्लस मिनियंस आर द क्यूटेस्ट, सो ऑफ कोर्स यू शुड वॉच इट. जी हाँ, इसी के साथ मोयना 2 आप देख सकते हैं और मोयना जो है वो आप देख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी. और या इसी के साथ ये सारी की सारी मूवीज आप देख सकते हैं. और अगर आपको एक और फन मूवी देखनी है, जी हाँ एक और फन मूवी देखनी है, तो आप देख सकते हैं अटैक ऑन टाइटन द एनिमेटेड वर्जन. जी हाँ, ये भी आप देख सकते हैं. सो या गो फॉर इट एंड टेक योर किड्स, जो कि मैंने 3 मूवीज आपको बताई हैं, आप देख सकते हो और मजे कीजिए. जी हाँ, बच्चों के साथ मूवी देखना है, वो भी एनिमेटेड मूवी, वो भी एक अलग ही फन है. सो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं. इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, तो इतने वक्त से हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी फील्ड में एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। वेल, चलिए फाइनली ह्यूमंस जो है वो एआई को रिप्लेस कर रहे हैं और एआई पर जो है वो शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। वेल, आई डोंट नो एनी अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना हु इज डूइंग इट, बिकॉज चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले एआई में बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक रिसर्च कर डाली है। उन्होंने रोबोट्स ऐसे बना दिए जो कि प्रीटी मच they can do literally everything. So, यहां पर चाइना ने जो है वो अपने रूल्स को टाइट कर दिया है AI companion services वाले के फ्रंट पर। जी हाँ, सो बेसिकली चाइना जो है क्रैक्स डाउन ऑन AI girlfriends over addiction fears and falling birth rates. So, लोग जो है उनको लग रहा है कि humans जो है वो अब अच्छे companions नहीं बन सकते हैं, तो they are going for AI companions. जी हाँ, अब इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये जापान की भी है और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की है, जहां पर लोग जो है उनको लग रहा है कि AI companion is way better than any human companion, और वहां पर लोग जो है वो AI companions का सहारा ले रहे हैं अपनी loneliness को दूर करने के लिए। जी हाँ, कुछ लोग तो AI से शादी भी कर रहे हैं, लाइक लिटरली मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया, ऐसे भी इंसिडेंट्स देखने को मिले। लेकिन चाइना ने जो है वो देख लिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग जो है वो रियल ह्यूमंस के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे नहीं, और रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, शादियां नहीं होंगी, तो फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो बर्थ रेट जो है वो फॉल कर रहा है चाइना का बहुत ही खतरनाक रेट पे। तो चाइना ने देख लिया है कि ऐसे ही लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, यहां पर एक और मुसीबत आ गई है, एंड दैट इज AI companion। अब लेडीज को लगता है कि मर्द उनको समझ नहीं पा रहे हैं, मर्दों को लगता है लेडीज उनको समझ नहीं पा रही है, तो वो दोनों ही सोचते हैं कि उनको AI समझ पा रहा है, तो लेट्स जस्ट बी इन अ रिलेशनशिप विद AI। बट द थिंग इज कि इसकी वजह से लोग जो है वो रियल रिलेशनशिप्स बना नहीं पा रहे हैं और बच्चे भी नहीं पैदा हो रहे हैं। तो चाइना ने कह दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, उन्होंने इमोशनल डिपेंडेंसी को जो है वो इनकरेज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि रियल वर्ल्ड कनेक्शंस जो है उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, और आपको रियल कनेक्शन और रियल रिलेशनशिप से बनाने पड़ेंगे। और आपको तो पता ही है कि बाकी दुनिया में आपको फिर भी चॉइस मिलती है, चाइना तो डंडा उठा के मारता है और फिर बोलता है कि यू नो व्हाट, यू हैव टू डू इट, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, रियल रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे, AI कंपेनियन से दूर रहना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मतलब एटलीस्ट इन अदर कंट्रीज आपके पास चॉइस तो है, चाइना वालों के पास तो चॉइस भी नहीं है। अब उनको कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, AI से अब दूर रहो, एटलीस्ट कंपेनियनशिप के मामले में, क्योंकि यू हैव टू गिव बर्थ सो दैट माय कंट्री कैन गो ऑन। जी हाँ, यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।
6: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
7: यार आई एम सो वरीड, actually want an experienced lawyer to handle my case.
6: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
7: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
6: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
8: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
9: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. Commercial matter हो जैसे lease का मामला, business हो या फिर घरों की buying selling का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
8: अरे वाह, इनका पता बताना।
9: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
10: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
11: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों एक और चीज बहुत ही ज्यादा चर्चा में बनी हुई है और वो है एलन मस्क। जी हाँ, ऑफकोर्स एलन मस्क जो है अब दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर नहीं बचे, मतलब ऑफकोर्स वो ट्रिलियनेयर बन के अब वापस से बिलियनेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए, दैट इज वन थिंग। बट वो सुर्खियों में इसलिए बने हुए क्योंकि वो पड़े हुए हैं क्रिस्टोफर नॉलन के पीछे। नाउ आप लोग बोलोगे कि अब क्या हो गया निविया शर्मा। सो आप सबको पता है क्रिस्टोफर नॉलन की द मूवी द ऑडिसी जो है वो आई हुई है, नई मूवी है जिसका नाम है द ऑडिसी, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी पे है। मैंने आपको बताया है कि कैसे वो थिएटर्स में लगी हुई है एंड यू कैन वॉच इट। बट द थिंग इज कि यहाँ पे एलन मस्क को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है इससे। एलन मस्क इज लाइक यू नो वॉट, आई डोंट लाइक दिस। उन्होंने पहले ही जब इसकी कास्टिंग हो रही थी तभी उन्होंने इसके बारे में कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अपेरेंटली उनको अच्छा नहीं लगा कि लुपिटा लुपिता नियांग को हेलन ऑफ ट्रॉय का किरदार निभाने के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने चूज किया, बिकॉज हेलन ऑफ ट्रॉय जो है वो डेफिनेटली एक अफ्रीकन वुमेन नहीं थी, लेकिन अफ्रीकन वुमेन को हेलन ऑफ ट्रॉय बनकर चूज किया गया बनने के लिए, और ये चीज जो है वो पसंद नहीं आई थी उनको, कास्टिंग चॉइसेस पसंद नहीं आई थी। तो अब एलन मस्क कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, इस साल के खत्म होने से पहले पहले मैं अपनी एक एनिमेटेड द ऑडिसी बनाने वाला हूँ। जी हाँ, आप लोग बोलोगे वाह माय गॉड, मतलब एलन मस्क को यहाँ वहां मतलब आजू बाजू इतने सारे बिजनेसेस क्रिएट करने के बाद इतना भी टाइम है उनके पास कि द ऑडिसी अगर अच्छी नहीं बनी है तो उनको उसका अच्छा वाला वर्जन क्रिएट करना है अपने टाइप का जो उनके हिसाब से सही है। वेल वेल वेल, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ स्टिल, आई मीन ही इज नॉट द ट्रिलियनेयर राइट नाउ, बट द थिंग इज कि ही स्टिल इज द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ and he has all the money in the world, so he can do it. So yeah, उन्होंने अपने tweet करके उन्होंने X पर कह दिया है कि वो इसका एक animated version जो है वो बनाने वाले हैं, और the Odyssey जो है वो उनके हिसाब से ज़्यादा अच्छी होने वाली, जो Christopher Nolan बना रहे हैं वो अच्छी नहीं है। By the way, Christopher Nolan की movie जो है वो 300 million dollars कमा चुकी है, so you can imagine कि वो movie कितनी ज़्यादा hit हो रही है। But Elon Musk के according, no, it's not that. So let's see कि Elon मस्क का द ओडिसी वर्जन कैसा होता है। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि जबरदस्त होने वाला है। अगेन
12: वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे, और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: वाली गाड़ी।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा करते हैं रुख खबरों की दुनिया की तरफ। क्या क्या चल रहा है खबरों की दुनिया में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की कुछ मुख्य खबरों से। जी हाँ, राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि आपके स्टूडेंट्स को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। और ऑफकोर्स वो सरकार को ये कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कहा। जी हाँ, आधी रात को सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर अभिजीत देबके ने क्या कहा। सो बेसिकली नीट पेपर लीक के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में जो है वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। उन्होंने संसद के लिए मार्च भी किया था, उसमें लाठी चार्ज हुआ और बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ। लेकिन यहां पर सोनम वांगचुक जो कि साथ दे रहे थे, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, अपारेंटली उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी जो कि उनके साथ बैठी थी, उनका क्या कहना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को आधी रात के बाद 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत देबके ने अपने वीडियो संदेश में इस पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, हमें राहत है और खुशी भी कि सोनम सर ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सर, आपके असाधारण साहस और त्याग के लिए आपका धन्यवाद। आपने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। आपका जीवन इस देश के लिए बहुत अनमोल है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट्स पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहते हैं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇੰਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇੰਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇੰਸਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: Digicel, better together.
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
5: Priya, next month Mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
7: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
8: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
9: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
8: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
10: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660। 0415-952-660.
11: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके फेवरेट टॉपिक टैरिफ की। जी हाँ, सो अमेरिका ने अपने लगभग 60 ट्रेड पार्टनर देशों पर नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है। उसका कहना है कि ये देश जबरन मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। 10 से 12.5% तक के ये टैरिफ अमेरिका के प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स देशों पर लागू होंगे। इनमें भारत, ब्रिटेन, चीन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और जापान भी शामिल है। ये टैरिफ शुक्रवार से लागू होंगे। इससे पहले इस साल विदेशी सामान पर लगाया गया अस्थायी 10% टैरिफ अब समाप्त हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद शुरू हुए ट्रेड वॉर में ये ताजा बड़ा कदम माना जा रहा है। इस साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करके दुनिया भर के देशों पर लगाए गए कई टैरिफ कानूनी रूप से वैध नहीं थे। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रमुख व्यापार नीति को लागू करने के लिए दूसरे कानूनी रास्ते अपनाने शुरू किए। पिछले महीने व्हाइट हाउस ने पहली बार प्रस्ताव रखा था कि जिन देशों पर जबरन मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास करने का आरोप है, वहां से अमेरिका आने वाले सामान पर 10 या 12% टैरिफ जो है उन पर लगाया जा सके।

जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात फिर से करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ कह दिया है। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका और सऊदी अरब ने एक डील की है जिससे कि वो अलाउ करेगा और हेल्प करेगा यूरेनियम एनरिच करने में सऊदी अरब को, ताकि वो एनर्जी के नए सोर्सेस को ढूंढ सके अपार्ट फ्रॉम ऑयल। जी हाँ, सो ऐसे में ऑफकोर्स यूरेनियम एनरिचमेंट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनाने के लिए नहीं होती है बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी होती है। सो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की थी, लीडर्स ने टिप्पणी की थी, लेकिन यहाँ पर अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समझौता तभी लागू होगा जब सऊदी अरब इसराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दे। जी हाँ, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समझौते को मंजूरी दी जाएगी। ये समझौता सिर्फ सिविल मकसद के लिए है, लेकिन इसकी मंजूरी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि सऊदी अरब प्रतिष्ठित और सफल अब्राहम समझौतों में शामिल होता है या नहीं। हालांकि ये तुरंत साफ नहीं हो पाया कि इसराइल को मान्यता देने और अब्राहम समझौतों में शामिल होने की ये शर्त उस परमाणु समझौते के मूल दस्तावेज का हिस्सा है या नहीं। इस समझौते का टेक्स्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, ये भी अभी सार्वजनिक

0: जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे मम्मी पापा सही कहते हैं कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, बाहर के खाने में बहुत कुछ होता है, तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए। वेल ऑफकोर्स हम लोग यही सुनते हुए बड़े हुए हैं और ये चीज जो है वो अभी कहीं ना कहीं सेंस बना रही है, क्योंकि एक किस्सा जो है वो वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, जहां पर एक साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर ने लिटरली चार्जशीट फाइल की है दो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट ओनर्स पर, जिनको अक्यूज किया गया है फॉर इंपोर्टिंग एंड सर्विंग नियरली 49,000 एंट्स, चींटियों की बात हो रही है जी हाँ, चींटियां फ्रॉम द यूएस एंड थाईलैंड ओवर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल में वो मिशलिन स्टार जो रेस्टोरेंट है, जो कि लिटरली बहुत ही बड़ी, मतलब एक पद माना जाता है, बहुत ही बड़ा जो है लेवल माना जाता है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, उन पर ये केस हुआ है, उन पर ये चार्जशीट फाइल हुई है कि 4 साल में उन्होंने लोगों को 49,000 से ज्यादा चींटियां खिलाई हैं और इन्हें उन्होंने इंपोर्ट किया है अमेरिका और थाईलैंड से, और इनको यूज किया गया है डिशेस पर, डेजर्ट्स पर और शरबत पर। या आपने सही सुना। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी चींटियां जो हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो खाने की कैटेगरी में आते हैं, खासकर जितनी भी ये एशियन कंट्रीज हैं उनमें, लेकिन ये वाली जो चींटियां हैं वो उस वाले रडार में बार में भी नहीं आती, मतलब ये उससे अलग है, मतलब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक भी नहीं है। माना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो अगर हम साउथ कोरियन लोगों की बात करें, चाइनीज लोगों की बात करें, थाईलैंड लोगों की बात करें, लेकिन यहां पर ये जो चींटियां यूज हुई हैं उन डिशेज के लिए वो तो खाने की कैटेगरी में आती भी नहीं थी। अब आप लोग बोल रहे होंगे तो फिर चाचा जी ने क्यों डाल दी? वेल वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट द थिंग इज कि एक ही चीज सेंस बना रही है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा आई वाज लाइक कि मम्मी सही कहती है, घर का खाना खाओ, घर पे बनाओ और मस्त रहो, क्योंकि बाहर आपको मिशलिन या किचलिन या चिकलिन पता नहीं क्या खिला रहा है, मतलब मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट, मतलब ये इट्स अ लेवल जो कि कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो अचीव करना चाहता है। आप किसी भी मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाओगे तो यू विल बी लाइक यू नो व्हाट आई have literally कितना अच्छा experience है, मैंने dine in किया है Michelin star restaurant में, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि वही restaurant वही chefs आपको कुछ खतरनाक ही खिला रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि मम्मी के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा है इस दुनिया में, उसको कुछ नहीं बीट कर सकता, मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट भी नहीं, पता नहीं क्या खिला दे हमें। जी हाँ, तो आगे से घर के खाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और बाहर के खाने पर कम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, और ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में हम आपके लिए पुराने गाने प्ले करते हैं। आपकी जो फरमाइश होती है वो भी पुराने गानों से रिलेटेड होती है, और हम वो पुराने प्यारे प्यारे खूबसूरत किस्से भी आपको सुनाते हैं जो शायद आपने सुने भी ना हो। जी हाँ, सो आर यू एक्साइटेड फॉर इट? बिकॉज आई लव दिस सेगमेंट एंड माई लिसनर्स डू टू। सो यहाँ पर जिस गाने से मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो बहुत ही खास गाना है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि इस गाने से रिलेटेड जो आर्टिस्ट है, आज उनका जन्मदिन है, और मैं आपको गेस करने के लिए कहूँगी अगेन। इससे पहले हम उनके लिए गाने प्ले करें, उनके बारे में बात करें, तो आप गेस कीजिए आज कौन से बड़े सुपरस्टार का जन्मदिन है जिसने उस एरा में लोगों को अपनी हैंडसमनेस से और अपनी अदायगी से मंत्रमुग्ध कर दिया था। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

क्या बात है ना, पिछले कल मुकेश का जन्मदिन था और आज जन्मदिन है मनोज कुमार जी का। मुकेश ने ही उनके लिए ये गाना गाया है और मनोज कुमार जी की तो बात मैं क्या ही करूं। ऑफ कोर्स उन्हें भारत कुमार कहा जाता था, क्यों कहा जाता था वो हम बात करेंगे, लेकिन आज उन्हीं का जन्मदिन है। मुझे ये बताइए कि मनोज कुमार की जितनी भी मूवीज हैं उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है और कौन सी एक्ट्रेस के साथ उनकी केमिस्ट्री जो है आपको सबसे अच्छी लगती थी। अगर मैं कहूँ तो मनोज कुमार सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम एक्टर हुए हैं। मतलब अगर आप सच में हैंडसम एक्टर बात करें तो मनोज कुमार वॉज रियली रियली हैंडसम। उनकी अदायगी परफेक्ट थी, उनका चेहरा परफेक्ट था और उनकी केमिस्ट्री भी परफेक्ट थी। आज उनके जन्मदिन के दिन हम उन्हें याद करेंगे, उनके गाने भी प्ले करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपकी फेवरेट मनोज कुमार मूवी कौन सी है और क्यों उन्हें भारत कुमार कहा जाता था। दैट इज ऑल्सो आई एम गोना टेल यू अबाउट, पर पहले हम सुनेंगे एक और खूबसूरत सा गाना।

जी दोस्तों, शहीद मूवी से भरत सिंह के कैरेक्टर को इतने अच्छे से पर्दे पर उतारने के बाद मनोज कुमार को एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया सबने। जी हाँ, मनोज कुमार जो कि लिटरली किसी भी रोल में बहुत ही खरे उतर रहे थे, जब वो किसी भी देशभक्ति मूवी में आते तो लोग जैसे उनके साथ दिल लगा जाते। जी हाँ, लोगों को लगता कि नहीं, सच्चा देशभक्त तो ऐसा ही दिखता होगा, सच्चा देशभक्त तो ऐसी ही बातें करता होगा। जी हाँ, अब जब लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने भरत भगत सिंह के कैरेक्टर की वो मूवी देखी जो कि मनोज कुमार ने की थी, तो वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने मनोज कुमार को जय जवान जय किसान पर मूवी बनाने को कहा। जी हाँ, उन्होंने सच में मान लिया था कि अगर कोई देशभक्ति पर मूवी बनेगी हिंदी फिल्म जगत में, तो मनोज कुमार ही उसमें सबसे अच्छे से खरे उतरेंगे। जी हाँ, आप खुद सोचिए, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है एक एक्टर को कि आप इस नारे पर जो है अब अपनी अगली मूवी बनाइए। बस फिर उसके बाद क्या है, रोटी कपड़ा मकान, क्रांति, बहुत सारी और बड़ी बड़ी मूवीज उन्होंने की। मतलब लिटरली अगर हम बात करें कि किसी एक्टर ने अगर सबसे ज्यादा देशभक्ति की मूवीज की थी तो वो मनोज कुमार थे, एंड दैट वाज द रीजन उनका नाम भरत कुमार पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी एक मूवी थी जिसमें उन्होंने देशभक्त का ही कैरेक्टर प्ले किया था, और उसका एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उसमें उनके कैरेक्टर का नाम था भारत सिंह, और ऐसे भारत कुमार, और ऐसे ही उनका जो है नाम वो भारत कुमार पड़ गया मनोज कुमार से, बिकॉज एवरी वन वॉज लाइक कि अगर देशभक्त सच्चा कोई दिखता होगा तो ऐसा ही दिखता होगा। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और आपको काफी पसंद भी आने वाला है।

जी दोस्तों, इसी के साथ ऐसा कहा जाता था कि मनोज कुमार बहुत ही सिद्धांतों वाले एक्टर थे। जी हाँ, ऑफकोर्स उनके डायरेक्शन, उनकी अदायगी, उनकी खूबसूरती की तो तारीफ हमेशा से होती आई है, लेकिन उनके सिद्धांत बहुत ऊंचे थे। जी हाँ, इस बारे में हेमा मालिनी ने बताया है, जिन्होंने उनके साथ काफी पिक्चरों में काम किया है। हेमा मालिनी कहती है कि वो इकलौते ऐसे एक्टर थे जो कि अभिनेत्रियों को छूते भी नहीं थे, चाहे फिर रोमांटिक सीन ही क्यों ना करना हो। जी हाँ, पहले तो वो डायरेक्टर्स को बोलते थे कि ऐसा सीन हो ही ना तो बेटर है, लेकिन अगर करना भी होता था तो वो अभिनेत्रियों को छूते ही नहीं थे। जी हाँ, मतलब जिस हिसाब से वो काम करते थे, मतलब जिस डेडिकेशन से वो काम करते थे और जिस तरह से वो काम करते थे, वो सारी की सारी चीज बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग थी। और ये कहा है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने, और सिर्फ हेमा मालिनी ने नहीं, इनफैक्ट वहीदा रहमान और आशा पारेख और जितनी भी और एक्ट्रेसेस ने उनके साथ काम किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का चयन उन्होंने किया है। मतलब आप खुद सोचिए कि एक को एक्टर जो आपके साथ काम करते हुए सबसे पहले तो बहुत इंस्पायर्ड फील करता है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा सेफ फील करता है, नो वंडर मनोज कुमार जो है वो अपनी एरा के सबसे जबरदस्त एक्टर्स में से एक थे। जी हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच और ये एक बहुत ही बड़ा झटका है हिंदी फिल्म जगत के लिए, लेकिन उनकी अदायगी हमेशा हमारे साथ रहेगी और उसमें कुछ भी कोई भी दोहराए जो है वो नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना मनोज कुमार जी का ही आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे हम कल Top 10 Hot 10 में। सो आई होप आप अपने वीकेंड को बहुत ही मजेदार तरीके से प्लान कर चुके हैं, क्योंकि वीकेंड जो है वो मजेदार होता है, तभी तो रिचार्ज होता है इंसान, और जब इंसान रिचार्ज होता है तभी तो करता है वो काम। सो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं इतना ही कहूंगी कि अब आप मजे कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से जो बहुत ही खूबसूरत है, इट्स अ क्लासिक कल्ट फेवरेट, सो मुझे लगता है कि इसी से हमें प्रोग्राम को एंड करना चाहिए। और ये गाना है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। जी हाँ, यही हम सुनेंगे एंड में, एंड दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, बाय, सी यू, टाटा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

0: जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम्हारी मैं जा। लगता रूम में रह गए।

और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन क्लॉक लॉन्च। ब्रिस्बेन के क्वीन स्ट्रीट मॉल में 2032 ओलंपिक खेलों का 6 साल का ऑफिशियल काउंटडाउन क्लॉक शुरू कर दिया गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान मेयर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शहर के लोकप्रिय इबिस पक्षी को भी ओलंपिक का शुभंकर बनाया जा सकता है। वहीं ब्रिस्बेन का फैशन ब्रांड ब्लैक मिल्क का बड़ा फैसला। जी हां, ब्रिस्बेन का मशहूर क्लॉथिंग ब्रांड ब्लैक मिल्क अब अपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बंद कर रहा है। बढ़ते खर्चों के कारण कंपनी अब अपने कपड़ों का उत्पादन विदेश में करेगी। हालांकि इसके डिजाइन का काम ब्रिस्बेन स्टूडियो से ही चलेगा। वहीं मॉर्टन आइलैंड पर बर्ड फ्लू का संदिग्ध मामला। ब्रिस्बेन के पास मॉर्टन आइलैंड पर एक मृत समुद्री पक्षी में H5 बर्ड फ्लू की पुष्टि का संदिग्ध मामला सामने आया है। हालांकि क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्मर्स सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं ग्रेट बैरियर रीफ पर यूनेस्को की रिपोर्ट। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में सूची में डालने से रोक दिया है। हालांकि उन्होंने क्वींसलैंड सरकार के को जंगलों की कटाई रोकने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पीक डाउन्स माइन में दुखद हादसा। क्वींसलैंड की पीक डाउन्स माइन में आज सुबह वाहन दुर्घटना में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। माइनिंग कंपनी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ओरिजिन एनर्जी ग्राहकों के लिए डेटा अलर्ट। क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ऊर्जा प्रदाता ओरिजिन एनर्जी ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है कि एक साइबर हमले के दौरान कुछ बैंक डाटा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने ग्राहकों को पासवर्ड बदलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बड़ी बातचीत। नीट और एग्जाम लीक मुद्दे को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में आज बड़ा अपडेट आया है। सरकार और छात्र नेताओं के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं अमेरिका का भारतीय सामानों पर नया टैरिफ। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 10% का नया आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रेड नियमों का हवाला दिया है। हालांकि भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं DRDO की मिसाइल कुशा का सफल टेस्ट। भारत की रक्षा प्रणाली को आज एक बड़ी ताकत मिली है। रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने अपनी नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ऐसे के साथ गंगा किनारे से अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि पटना में गंगा नदी के किनारों पर बने सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 6 हफ्ते के भीतर पूरी तरह साफ किया जा सके। वहीं शिक्षकों के लिए दिल्ली चुनाव आयोग की राहत। दिल्ली चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची और चुनावी सर्वेक्षण से जुड़े सरकारी कामों का असर सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा। मिडल ईस्ट के समुद्री व्यापारिक रास्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य और समुद्री निगरानी ठिकानों पर लगातार 13वें दिन हवाई हमले किए हैं। वहीं शी जिनपिंग करेंगे अमेरिका का दौरा। वॉशिंगटन से बड़ी खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 दिसंबर को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी के साथ विमानन संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी सादिया जहीदी। जी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था में इतिहास रच दिया है। सादिया जहीदी को इस वैश्विक उड्डयन संस्था की पहली महिला प्रमुख चुना गया है। वहीं स्पेन में जंगलों की आग बुझाने का अनोखा तरीका। स्पेन में जंगलों की आग रोकने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया है। वहां प्रशासन गधों की मदद से जंगलों की सूखी घास चरवा रहा है ताकि गर्मी के दिनों में झाड़ियों में अचानक लगने वाली आग को फैलने से रोका जा सके।
इसी के साथ सलमान रुश्दी ने कोर्ट में दर्ज कर

0: पाई गवाही। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने साल 2022 में न्यूयॉर्क में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में चल रहे ट्रायल के दौरान अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करवाई है। इसके साथ नेपाली सीमा पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार। नेपाल से भारत की सीमा में बिना कागजात अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में एक अमेरिकी नागरिक और एक संदिग्ध अलगाववादी कार्यकर्ता शामिल है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का शानदार आगाज। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान 23वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत हो गई है। वहीं भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। हरारे में खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं विश्वनाथन आनंद बने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष। भारत के पूर्व विश्व चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एक्शन से भरपूर शुरुआत। ग्लासगो में आज भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग जिम्नास्टिक और स्विमिंग के खिलाड़ी एक्शन में हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में आज भारत के पास पदक जीतने के कई मौके रहेंगे। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
4: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें परमानंद @optusnet.com। tax.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेंबर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
12: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
14: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
2: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

0: यार सागर में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंजन ओवाने एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो, बॉलीवुड विच अक्सर ए मनिया जांदा है कि बॉक्स ऑफिस दी सफलता सिर्फ 100 करोड़ ते बजट ते वड्डे सुपरस्टार्स दी स्टार पावर ते निर्भर करती। हालांकि 2010 तो 2018 दे दहाके ने इस मिथ नूं पूरी तरह दे नाल तोड़ दिता। इस दौरान कई अजिहियां फिल्म आईया है ने जिन्हां विच ना तो खान वर्गे वड्डे नाम सी ते ना ही शानदार विजुअल इफेक्ट दा तामझाम, फिर भी अपनी मजबूत कहानियां वजह नाल ए स्लीपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई। विकी डोनर तो लैके स्त्री तक इन्हां बहुत सारिया घट बजट दिया फिल्मां ने साबित कर दिता है कि जद कंटेंट ही असली सुपरस्टार होवे तां घट इन्वेस्टमेंट विच वी इतिहास रचिया जा सकता है। इन्हां बारे ही तुहानूं दस्सदी आं कि कि फिल्मां हैगियां ने एक एक करके, पर पहला सुनो एक गीत।

हाँ जी जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी वंसन वाने हम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। इना फिल्मा दे काट बजट ते वड्डे स्टार कास्ट तो बिना वाली फिल्मा दे विच सब तो पहला नाम हुंदा हैगा जिहड़ा वो है जी फिल्म है फंस गए रे ओबामा। ये फिल्म 2010 दे विच आई सी। बजट फिल्म का महज 3-4 करोड़ से तो कलैक्शन इसने 14 करोड़ कर ली सी। इस दागे की शुरुआत विच डायरेक्टर सुभांशु कपूर ने एक डार्क कॉमेडी पेश की सी। ग्लोबल मंदी की पृष्ठभूमि से बनी इस फिल्म विच कई बड़े स्टार्स नहीं सी। रजत कपूर और संजय मिश्रा वर्गे टैलेंटेड एक्टर सीगे पर इसकी राइटिंग इन्नी वधिया सी कि दर्शकों के दिल नूं छू गई। फिल्म ने ना सिर्फ अपनी लागत वसूली बल्कि मुनाफे दे मामले विच कई वड्डे बजट दियां फिल्मां नूं भी पिछे छाड़ दिता सी। डबल ट्रिपल कमाई करकी सी क्योंकि एक्टर बहुत ज्यादा वधिया सी ते कंटेंट ही किंग सी।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन उवाने एम ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम आता है जी 2012 आई उस फिल्म का जिसका हाल तक जिक्र हुंदा हैगा क्योंकि बहुत सोहनी फिल्म है। फिल्म का नाम है जी विकी जोनर। बजट से इसका 5 करोड़ ते कलैक्शन की इसने 60 करोड़ दी। आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म हैगी है विकी जोनर। बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर भी साबित हुई। शुरुआत विच डिस्ट्रीब्यूशन स्पर्म डोनेशन वर्गे टैबू सब्जेक्ट बनी इस फिल्म नू लैके शो नहीं सी डिस्ट्रीब्यूटर्स, पर सुजीत सरकार दे डायरेक्शन ते जूही चतुर्वेदी की कहानी ने इस नू एक फैमिली एंटरटेनमेंट विच बदल दिता। 5 करोड़ के बजट विच बनी इस फिल्म ने 60 करोड़ तो ज्यादा का बिजनेस किया, जो उस समय किसी चमत्कार तो घट बिल्कुल भी नहीं।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रुसवानी वन सन ओवाने ते जी आरचे संदेश शौलक दिनाल से बने हुए। अगली जेड़ी फिल्म है वह है जी कहानी। ये भी 2012 दे विच आई सी। बजट इसका 8 करोड़ सी पर कमाई इसने 12 गुणा कर ली सी, तकरीबन 104 करोड़ तो ज्यादा की कमाई कर ली सी। विद्या बालन स्टार है फिल्म कहानी। ते कहानी ने साबित कर दिता है कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म भी बिना किसी मेल सुपरस्टार तो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। कोलकाता दी सड़कां ते शूट हुई इस सस्पेंस थ्रिलर का बजट इन्ना घट सी कि विद्या बालन ने कई सीन अपने खुद के कपड़े पाए से कई सीन्स दे विच। फिल्म दे क्लाइमैक्स ट्विस्ट ने इसनू एक कल्ट क्लासिक बना दिता। इसने अपनी लागत तो जिवें तुहानू पहला दस्सिया ना 12 गुणा ज्यादा की कमाई की।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर

0: बताना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमत प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

जी मित्रों, आप रेडियो ब्रिजवानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और आज शनिवार 25 जुलाई सन 2026 है और सुबह का बेला है। ब्रिजबन में मौसम आज बहुत ही खूबसूरत है, धूप निकलेगी। इसी प्रकार का मौसम का खबर जो है हमें मौसमी दफ्तर ब्रिजबन ने प्रदान किए हैं और उनके अनुसार साउथ ईस्ट क्वींसलैंड, ब्रिजबन, इप्सविच, सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट में धूप निकलेगी और 6:30 जी हाँ 6:30 सूर्य उदय हुआ है। 5:15 सूर्य अस्त होगा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु बहेगी और अधिक से अधिक तापमान 21 रहेगा, कम से कम 7। और इप्सविच में ठंड बहुत है, यहाँ पर 21 दिन में रहेगा, रात्रि को 1, हवा का रफ्तार 5। सनशाइन कोस्ट में 19 रहेगा दिन में, रात्रि को 9, हवा का रफ्तार 18। और गोल्ड कोस्ट में रहेगा 21, 7 रात को, हवा का रफ्तार 10। नेंडी, लंबासा, सूबा तीनों केंद्रों पर आकाश पर घटा छाई हुई है और नेंडी में 6:40 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:53 पर सूर्य अस्त होगा और 25 रहेगा दिन में, रात को 22, हवा का रफ्तार 11। और लंबासा में 27 रहेगा दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 13। और सुबह में 25 रहेगा दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 13। और आकाश पर घटा छाई रहेगी। मित्रों, बात कर रहा था सुबह ही और बोल रहे थे कि भाई ठंड बहुत है और इसी प्रकार का मौसम है आज। ओकलैंड में ज्यादातर धूप निकलेगी, 7:25 पर सूर्य उदय हुआ है और 5:28 पर सूर्य अस्त होगा। आकाश पर घटा छाई रहेगी समय समय से, अन्यथा धूप निकलेगी। 13 दिन में, रात्रि को 10, 37 विंड स्पीड। वेलिंगटन में हल्की बारिश हो रही है, 19 या 9 रहेगा दिन में, रात्रि को 6 और 43 मैक्सिमम विंड स्पीड। फिर मुंबई ले चलते हैं जहां पर आकाश पर घटा छाई हुई है, फुहारे बरस रहे हैं, बड़ी बारिश हुई, कुछ लोगों का मृत्यु भी हुआ है यहां पर बाढ़ चढ़ने के कारण। 29 रहेगा दिन में, रात्रि को 27, हवा का रफ्तार भी 27। अमृतसर में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी और 31 रहेगा दिन में, रात्रि को 27, हवा का रफ्तार 11। और नई दिल्ली में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 32 दिन में, रात्रि को 28, हवा का रफ्तार 13। और 5:40 पर सूर्य उदय होगा और 7:17 पर सूर्य अस्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और क्या बात है भाई, सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, प्रोग्राम सुन लेते हैं। अमला जी, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग आपको, आप सबका स्वागत कर रही हैं। सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर और ईश्वर की असीम कृपा बनी है। और स्टूडियो का नंबर मित्रों याद रहे, 3279-1701, 3279-1701। अगर आप बात वगैरह करना चाहते हैं तो परमानंद का टेलीफोन नंबर है 0411-127-035। और आज शनिवार है भाई, कैसे सप्ताह बीता भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा कि आजकल सोमवार आता है, शनिवार आ जाती है, फिर घूम के सोमवार, फिर शनिवार, एक कितना रफ्तार में चल रहा है दुनिया भाई, समय भाग रहा है। और इसीलिए कहते हैं ना कि ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो समय के साथ हम चलते हैं, घड़ी को देख लेते हैं, उठ जाते हैं जल्दी से और सुकून की नींद आती है जब सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मालिक की असीम कृपा बनी रहती है, ऐसा ही होता है। तो मन में एक दूसरे के प्रति प्यार जताते रहें और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। तो मित्रों, हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज का जो पहला गीत है बहुत प्यारा सा गीत है और फिल्म जख्म के बारे में मैं क्या बोलूं आपसे। जख्म जो फिल्म था ये सही कहानी पर आधारित पिक्चर महेश भट्ट की माताजी के बारे में था और उन्होंने रहती थी हिंदू घर में लेकिन नमाज 5 बार पढ़ती थी और उन्होंने खत में लिखा था अपने बेटे के लिए, बहुत कुछ लिखकर छोड़ गई थी और हर समय उसको खत मिलता था लेकिन इन्हें मालूम था कि माँ दुनिया में नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अलका जी के मुख्य बिंदु से, प्यारा सा गीत है, रात सारी बेकरारी में गुजारी, 100 दफा दरवाजे पे गई, क्या बात है। कभी कभी से होता ना, फील वेरी अनईजी, सोते सोते रहते रहते मन करता कि चलो देखें दरवाजा के बाहर कोई आए तो नहीं है, और किसी का इंतजार हो तो ऐसे ही होता है, समय रुक जाता है, उनके याद में हम खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जरूर दरवाजा पे कोई आया है।

0: तो मित्रों, ये था फिल्म जख्म का बहुत ही लोकप्रिय गीत जो अभी आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान ही सुन रहे हूँ हैं, और मैं हूँ परमानंद संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं खबर के साथ।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: दोस्तों, इस समय 14 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। संगीत सरगम प्रोग्राम आप परमानंद के साथ सुन रहे हैं, और अगला जो गीत है साहिल चौधरी जी ने इसे संगीत से संवारा है, और योगेश साहब ने चुन चुन कर बहुत खूबसूरत शब्दों से इसे रचा है। आवाज है लता जी का, 1976 की सुपरहिट मूवी छोटी सी बात। ये पिक्चर अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, इसके हर गाने कमाल के हैं। चलो आप भी आनंद लीजिए गीत के साथ।

जी मित्रों, बहुत ही प्यारा सा गीत था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे गाने मुश्किल से मिलते हैं सुनने को, और पुराने गाने इनमें बहुत बड़ा जोश भरा होता है, बहुत सारी बातें इनमें होती हैं जो अगर हम ध्यान दें और सुनें तो अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसी राह पर चलने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हुए, दूसरा जो गीत है ये एक रोमांटिक गाना है, डिवट है, उदित साहब, अलका याग्निक जी ने, उदित साहब हैं श्रेया घोषाल जी के साथ इस बार। भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के गम, एक पल तुम मिलो तो सनम।

0: जी मित्रों, और ये था कुछ मीठा हो जाए फिल्म का नाम था। और सुबह का बेला है, प्यारा सा दिन है, 7 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, और हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। कुछ गाने नए भी आए हैं तो देखते हैं। मेरे ख्याल से एक खबर ले लेता हूँ, फिर मैं गीत की तरफ आऊँगा। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हुए एक विज्ञापन सुन लेते हैं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दो और गीत हैं इस सेगमेंट में। तो अब जो सुनने जा रहे हैं उसके बोल हैं कि कीर्ति तू मेरी, नया गाना है, नया फिल्म का, सुनते हैं।

0: तो मित्रों कैसे लगा है नया गीत? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा, बहुत ही प्यारा गीत था। मैं भी घबरा गया भाई, क्योंकि सिंगर का नाम नहीं दिया गया, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि कौन था सिंगर, लेकिन जो भी सिंगर हो बहुत ही प्यारा सा गीत था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। रेडियो ब्रिजबानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से 17 Mile Rocks ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अगला जो गीत है उसे बजाना चाहता हूँ मैं, और उम्मीद कर रहा हूँ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखते हैं। चलो मेरे ख्याल से खबर ले लेते हैं, थोड़ा डिले है इस गाने में, ये खबर ले लेते हैं, फिर हम आपको जो चुना हुआ गीत है वो सुनाऊंगा। सुनते हैं इस
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brizwani से।
9: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brizwani.
0: जी मित्रों, रेडियो ब्रिजबानी आप सुन रहे हैं 701 AM पर। मैं हूं परमानंद, संगीत सरगम प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 7:01 हुआ, लेकिन एक गीत और सुनाना चाहता हूं आपको, जो लिखा है अ जेनी विद इन एंड बियॉन्ड, कहीं दूर चला जाता हूं, गीत के बोल हैं। सुनाइए और सुनाता हूं मैं।

0: जी मित्रों, कैसा लगा? बहुत कुछ था इस गीत में, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा। और अब रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान ही सुन रहे हैं, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से 17 माइल रोक्स ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में 7 बज चुका है और 7:06 हुए हैं, और कुछ गीत ऐसे बज रहे थे तो मैंने सोचा कि उसे बजा लेता हूं, क्योंकि 2 नए गाने थे, बड़े मतलब वाले गाने थे, और इसलिए मैं आपको उसे सुना रहा था। और आपको बतला दूं कि आज हमारा ब्रिजबन का जो टेम्परेचर है, मौसम है, वो ज़्यादा यानी 100% सनी, जी हाँ, बहुत अच्छा मौसम है। 19 से लेकर 21 डिग्री दिन का तापमान रहेगा। वायु जो है धीमी गति से बहेगी, तो दिन में अभी सुबह के बेला में उठोगे तो ठंड लगेगी, लेकिन दिन में अच्छा हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक खबर लेता हूँ, खबर के बाद फिर पुराने गीतों का कार्यक्रम जो है उसे हम आपके लिए बजाएंगे। आपको बतला दूं कि आज मैंने थोड़ा मिक्स करके प्रोग्राम लाया, कुछ गीतों को अलग अलग चुना हूं, और देखते हैं कैसे चलता है सब कुछ।
1: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 census

तो मित्रों, मुझे अच्छी तरह इस साल याद है, 1985 एक ऐतिहासिक साल था मेरे लिए। और ये जो गीत बज रहा है, उन दिनों मैं क्या बोलूं आपसे, उन दिनों की बात ये थी कि सीडी तो था नहीं, तो मैं क्या किया, बैठे बैठे मैंने बोला चलो एक कैसेट रिकॉर्डर, जो कैसेट टेप था, उसी में मैंने इस गाने को कैद कर रहा था जो इस दफ़ा आप सुन रहे हैं। तो पूरा तो नहीं, क्योंकि 7.5 मिनट का गाना है जो भी बजाया हूँ मैं। और जब भी मैं कभी कहीं, मेरे पास डटसन 200 भी हुआ करता था ब्रिस्बेन में, तो जब भी कभी मैं बैठता था गाड़ी में तो एक गीत मैं ज़रूर बजा देता था। लंबा गाना, रास्ता अच्छी तरह से कट जाता था, और साथ में इस गीत के जो शब्द हैं, एक एक शब्द जो चुन चुन कर बने हैं गीत के लिए और जोड़े गए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एंटी भाई नमस्कारम जी, आपने एक विशेष फरमाइश किया है, दिल है कि मानता नहीं। भैया जी मालूम नहीं दिल कहाँ आपको लेकर जा रहा है, लेकिन भाभी भी साथ में हैं, मेरे तरफ से उनको भी नमस्कारम। एंड ऑल दोज ग्रैंड किड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। तो चलो सुनते हैं वही लोकप्रिय गीत, कुमार सानू जी, अनुराधा पोटवाल जी का, दिल है कि मानता नहीं।

0: ये मित्रों दिल है कि मानता नहीं, बहुत ही लोकप्रिय गीत था और पर्दे पर आमिर खान और पूजा भट्ट जी थे। तो आगे बढ़े, हम कुछ खबर भी ले लेते हैं, कुछ खबर आपके लिए बजाना है, तो चलो।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
7: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
8: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
7: ऐसा क्या खास है वहाँ?
8: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
7: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
8: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
9: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए? डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
0: और इस समय दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ी में 26 मिनट हुए हैं 7:00। संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ मैं हूं परमानंद और आपका तहे दिल से स्वागत है इस 2 घंटे के प्रोग्राम में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पुराना गीत जो है लता जी का गाया हुआ गीत है, बहुत खूबसूरत धुन है इनमें और बोल भी बड़े अच्छे हैं, कि तुमसे बिछड़ कर चैन कहाँ हम पाएंगे।

अशोक हरगोविंद भाई नमस्कार जी, आपको भी जोड़ रहा हूँ गीत में। कुछ ऐसे पुराने यादें हैं जो शायद इस गीत के साथ साथ ताजा हो जाएं।

0: जमित्रो तुमसे बिछड़कर चैन कहाँ हम पाएंगे। सही बात है, किसी से अगर रिश्ता बड़ा घनिष्ठ होता है और उनको जब हम खो देते हैं या कारण बस संपर्क नहीं हो पाता है, तब ऐसे ऐसे गाने याद आते हैं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: और दोस्तों, इस समय 26 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और चलते चलते अब याद कर रहे हैं उन लोगों को जिनका चाहे शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो। तो जिनका जन्मदिन आज है, बहुत सारे शुभकामनाएं आपको रेडियो ब्रिजबानी की तरफ से, और जिनकी शादी की सालगिरह है, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, खुश रहो, खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते, हंसते गाते मुस्कुराते आगे बढ़ते चलो जीवन में। तो चलो आगे बढ़कर एक बढ़िया सा गीत है, पति पत्नी और ओ दो। ये नया गीत, पुराना गीत है, नए अंदाज में गुरु रंधावा जी से अदा कर रहे हैं।

0: मित्रों, ये काली तेरी टोपी में ही जुड़ा हुआ था ये गाना, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो सुना देते हैं। लग रहा था जैसे कि हरभजन मान साहब इसे अदा कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
1: Digicel, better together. Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला गीत के साथ ममता शर्मा जी आ रही हैं और साथ में हैं ये ऐश्वर्या निगम जी। बहुत ही प्यारा सा गीत है, कई बार इसे बजाया। मास्टर साहिबान साहब, सलाम अलैकुम जी, आपको एक गीत बेहद पसंद है, तेरे मोहल्ले, सुनाते हैं।

0: जी मित्रों, हम लुट गए लुट गए लुट गए अभी आप सुन रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा ये दो गाना। और आगे बढ़ते हुए चलें खबर की तरफ भी। ज्यादा एड्स हैं तो कुछ बजाना जरूरी है, सुनते हैं ये।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
0: मित्रों कहते हैं 10 जुलाई तो ये तो बीत चुका है, मालूम नहीं भी चल रहा है कि नहीं ये पिक्चर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लागा नगजरिया से धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए साधना सरगम जी, विनोद राठौड़ जी के साथ मेजा साहब का ये लोकप्रिय दोगाना।

0: और दोस्तों 12 मिनट रह गए हैं इस समय 8 बजने में और परमानंद के साथ आप हैं, संगीत सरगम का लुफ्त ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर के साथ।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

ये मित्रों सांसों में आना, दिल को ये तेरी मोहब्बत है। और गीत के साथ साथ पहुंच रहे हैं बहुत करीब 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आप सुन सकेंगे। मगर उससे पहले चलते हैं, एक और गीत है, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना, तुम किशोर कुमार जी लता जी के साथ आपके लिए।

0: जी हाँ मित्रों, फिल्म मशाल का ये लोकप्रिय गीत आप सुन रहे थे और गीत के साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया हम आपके सेवा में पेश करेंगे। और क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा कुछ बदल गया है, चलो एक बार फिर हम चलते हैं आगे। और याद रहे 8 से 8:15 के बीच रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके सेवा में हम लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए पहले रानी क्रिएशंस का खबर सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Oh, jee, mitro, Rani Creations, aapka hardik swagat kar rahi hai sawa ghante ke program mein. Namaskar, sastrikal aur salam, aapko bhet kar rahe hain. Aur Rani Creations shop mein up to 50% of discount sale aapke liye hai. और यहाँ पर बहुत सारे साड़ीज हैं जो क्लियरिंग फ्रॉम $30 to $5। इसके साथ साथ सजने सजाने के लिए ज्वेलरी, शादी वगैरह कर रहे हैं उसके लिए दूल्हा दुल्हन के कपड़े, बच्चों के कपड़े, और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सेसरीज हैं जो आप खरीद सकते हैं रानी क्रिएशन शॉप में। और ऑनलाइन भी जा सकते हैं RaniCreations.com में, और यहाँ पर देख सकते हैं आउटफिट्स वगैरह, और कॉल भी कर सकते हैं 3391-0622 और या 0413-951-546 पर। तो चलो आगे बढ़ते हुए पहला गीत जो आपके लिए लेकर आए हैं श्रेया घोषाल जी से अदा कर रही हैं और इनके साथ दे रही हैं सोना महापात्रा।

0: कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।

जी मित्रों, बहुत प्यारा सा गीत था बहारा बहारा, और सोना महापात्रा और श्रेय घोषाल जी से अदा कर रही थी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और आपको याद दिला दें, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे महिलाएं जो हैं, खासतौर से फीमेल्स, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे हैं बहुत सालों से, बहुत यहीं पर पैदा हुई हैं, और इन्हें शायद साड़ी पहनने में थोड़ा दिक्कत आती होगी कि कैसे फोल्ड करें, प्लीट कैसे बनाएं, और बेचारे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि ब्लाउज कहाँ सिलाएं, अंडा स्केट्स कहाँ मिलेगा, और फिर ऐसे करके फिर उनका दिल में एक ऐसा पैदा होता है भावना कि भाई चलो रहने दो, कुछ और पहन लेते हैं। लेकिन कोई फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर सब साड़ी पहनेंगे, इनको भी साड़ी पहनना चाहते हैं। तो अगर ऐसा समस्या आपके सामने है तो रानी क्रिएशन शॉप में आ सकती हैं। यहाँ पर आप साड़ी चुन सकती हैं, साड़ीज विद ब्लाउजेस या सिर्फ साड़ी, और फिर आपका ब्लाउज सिलाई हो जाएगा रानी क्रिएशंस के द्वारा, अंडा स्केट्स भी बन जाएंगे। अगर साड़ी पहनने के लिए, प्लीट बनाने के लिए उतनी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीट भी रानी क्रिएशंस बनाकर साड़ी को रेडीमेड कर देगी। तो 2 मिनट लगेंगे साड़ी पहनने में, तो याद रखना ये सुविधाएं रानी क्रिएशंस शॉप में उपलब्ध हैं, ऑल अंडर वन रूफ, और जहाँ पर आपका पैसा का भी बचत होगा। तो चलो आगे, आप पता दे भाई, 33 बालाकलाबा स्ट्रीट उलंगेवा में, सप्ताह के 10 बजे खुलेंगे, आज शनिवार है, 10 बजे खुलेंगे, 4 बजे बंद होंगे। तो चलो चलते हैं आगे, हिमेश रेशमैया और साथियों का गाया हुआ गाना, हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है।

जय मित्रों, पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, आप सुन रहे थे। और चलें, एक और गीत का टाइम है, बारिश आई है। ये बिल्कुल नया गीत है आपके लिए, और इस गीत का जो बोल हैं बड़े अच्छे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे। श्रेया घोषाल और स्टीवन बेन जी इसे अदा कर रहे हैं।

0: ये मित्रों, इस गीत के साथ ही ईरानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक और सेगमेंट को लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी शॉपिंग एट ईरानी क्रिएशंस। एंजॉय द डिस्काउंट सेल पीरियड और फायदे उठाएं, और फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स अंडर वन रूफ, ईरानी क्रिएशंस, 33 बालाकलावा स्ट्रीट, उलंगेबा। अगले शनिवार तक आज्ञा दे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देख कर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: मित्रों, इस समय 18 मिनट हुए हैं 8 बजकर, और परमानंद का साथ रहेगा आप के साथ ठीक 8:30 बजे तक। और याद रहे कि इस प्रोग्राम के बाद निविया जी आ जाएंगी टॉप 10 लेकर, और फिर बीच में प्रोग्राम चलता रहेगा। कल है रविवार और कल धार्मिक प्रोग्राम वगैरह होंगे, तो फिरोज भाई सर्वप्रथम आएंगे 6 बजे से, और फिर 8 बजे नन किशोर दास प्रभु जी, फिर जतीश पूरन जी 9 बजे से, फिर रोय सिंह साहब 12:30 बजे से, सुशीला जी उसके बाद। तो ऐसे प्रोग्राम चलता रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक पुराना गीत दिमाग में बहुत दौड़ रहा है 2-3 दिन से, इसे लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब अदा कर रहे हैं। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, ये है टाइटल सॉन्ग। कभी कभी हम बड़े जिद्दी होते हैं ना, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, कभी कभी चैलेंज दे देते हैं एक दूसरे को, और फिर देखते हैं कि भाई वो होता है पूरा कि नहीं, और ये सब होता है ना जब बचपना साथ होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।

ये मित्र गीत के साथ साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी में लगभग 22 मिनट होना चाहते हैं 8 बजकर, और आप सुन रहे हैं संगीत सरगम नमक कार्यक्रम, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से सेवरिन माइल रॉक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। और आज मौसम बहुत प्यारा है, ऐसे प्यारे मौसम में चलो किसके साथ हम बाहर घूम आए ना। लता जी अदा कर रही हैं किशोरदा के साथ।

जी मित्रों, कैसे लगा है गीत? और गीत के साथ साथ बस घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, 27 मिनट हुए हैं 8 बजकर, और आप और मेरा सफर आज का जो था यहीं पर संपन्न होने जा रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर हम मिलते हैं इसी जगह पर, इसी प्रोग्राम में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखिएगा और चलते चलते गीत बजाएंगे, मगर उससे पहले अब जब समाप्ति आ चुकी है तो आपको बस याद दिलाना कि निविया जी थोड़ी देर में आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगी और दिन भर प्रोग्राम चलता रहेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, मौसम प्यारा है, ठंड तो है सुबह के बेला में, लेकिन रात्रि को टेम्परेचर अच्छा होता है, और सुबह के बेला में दिन में जब से तड़के होते हैं दिन 10 के बाद बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, जैसे आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अंटिल देन गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल डे, और मेरे तरफ से मेरी दुआ आशीर्वाद आपके साथ है। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम

तो कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, Top 10 Hot 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी वीकेंड आपकी आरजे निव्या की तरफ से। मुझे पता है कि आप लोगों को इस पल का, इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग बोलोगे कि हाँ निव्या शर्मा, मतलब वीकेंड खत्म होता है और अगले वीकेंड का इंतजार तभी से शुरू हो जाता है। मतलब मंडे आता है और हम अगले वीकेंड का इंतजार जो है वो करना शुरू कर देते हैं। बट डोंट वरी, आप इसमें अकेले नहीं है। इस दुनिया में हर एक कॉरपोरेट मजदूर यही कर रहा है, और ना सिर्फ कॉरपोरेट मजदूर, मतलब हर कोई जो कि थोड़े पल सुकून के चाहता है। जी हाँ, 5 दिन जम के काम करने के बाद वो चाहता है कि वो आराम से सो सके, आराम से खा सके, जल्दी ना हो किसी चीज को भी करने की, रश में कहीं जाना ना पड़े। और इसीलिए वीकेंड जो है वो हमारे लिए क्या मायने रखता है हम सबको पता है। तो आइए वीकेंड को सेलिब्रेट करते हैं। और आपको तो पता ही है वीकेंड को सेलिब्रेट करने का हमारा तरीका कुछ खतरनाक है। और ये खतरनाक तरीका है आपके लिए एक गजब का शो लाना जो कि आपको एंटरटेन करता है और आपको वाइब करवाता है, बट नॉट इन अ इवनिंग वाइब वे। जी हाँ, आपको गाने सुनाता है बट कोई यूजुअल नॉर्मल गाने नहीं, बल्कि सारे के सारे ट्रेंडिंग और हॉट गाने। जी हाँ, ऑफकोर्स इट्स अ Top 10 Hot 10, सो हॉट गाने तो बनते हैं मिर्ची से भी ज्यादा हॉट, बाय द वे। जी हाँ, तो बच के रहिएगा। सो इसी के साथ Top 10 Hot 10 की शुरुआत करते हैं। वो 10 चुनिंदा गानों के साथ मैं आ गई हूँ। और सबसे पहला गाना जो कि 10वें नंबर का गाना है इस हफ्ते की Top 10 Hot 10 की लिस्ट का, वो है आंखों से तूने 2.0, नॉट द पुराना वाला वर्जन बट नया वाला वर्जन। और ये एक नई मूवी आई है भाई तेरा स्टार है, वो अभी आने वाली है, 23 जुलाई को रिलीज होने वाली है। तो उसका गाना है जो काफी हॉट बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो अभिनेत्री हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो डांस करती हुई आपको नजर आएगी, वो लाल साड़ी में इतनी ज्यादा हॉट लग रही है कि वो लाल मिर्ची ही लग रही है। सो आइए सुनते हैं इस गाने को जो कि 10वें नंबर का है, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, इस गाने को सुन के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब आंखों से तूने ये क्या कह दिया और एकदम से आप क्लब पहुंच गए हो? जी हाँ, मतलब वो जो पीछे जो म्यूजिक आ रहा था ना, रिमिक्स वाला जो पार्ट है इसका, ढूं ढूं ढूं ढूं, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा आर यू श्योर ये ढूं ढूं ढूं ढूं था? अरे मतलब आपको पता है कि फीलिंग्स इंपॉर्टेंट, आप तक पहुंच गई ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ गया एंड वही मायने रखता है। सो द थिंग इज कि यहाँ पर आंखों से तूने ये क्या कह दिया कहा, एकदम सिजलिंग हॉट गाना था, लेकिन यहाँ पर सिजलिंग हॉट के साथ वो एकदम वू वू वू, मतलब आपको क्लबिंग वाली वाइब में भी लेकर जाएगा। So, I guess it's not bad. Yeah, what do you think about it? आप जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये पुराना गाना है और इसको नए तरीके से रिक्रिएट किया गया है, तो आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। You tell me about your thoughts. And इसी के साथ ये गाना जो है वो मूवी का है भाई तेरा स्टार है, जो कि 30 जुलाई को रिलीज हो रही है। पहले ही मैं बता चुकी, इसमें है राघव जुयाल और निहारिका। और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और 9वें नंबर के गाने की तरफ जाते हैं, जो कि है धमाल का गाना। जी हाँ, धमाल 4 का। अब अगर आप लोगों ने ये गाना नहीं सुना है तो आप लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन अगर आपने ये मूवी ही नहीं देखी है फिर गड़बड़ है, क्योंकि धमाल एक ऐसी मूवी है जो कि अगर आपने नहीं देखी तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। सो धमाल एक बहुत पुरानी मूवी है, उसके 3 पार्ट्स पहले ही बन चुके हैं, चौथा पार्ट ये वाला है। इसमें स्टारकास्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा गजब की है। जी हाँ, आपको रितेश देशमुख मिलेंगे इसमें, अरशद वारसी मिलेंगे आपको इसमें, आपको जावेद जाफरी मिलेंगे इसमें, आपको अजय देवगन मिलेंगे, और आपको बहुत बड़े बड़े और भी स्टार्स मिलेंगे। मतलब ऐसे स्टार्स जो कि कॉमेडी के किंग माने जाते हैं वो सब आपको इसमें मिलने वाले। टोटल पैकेज आपको मिलने वाला है। सो उसी का गाना है साड़ी, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

बाकी सब तो ठीक है, पर आप सबको भी मैं सुनाई दिया क्या? पीछे पैसा पैसा पैसा पैसा, ऐसा ऐसा ऐसा था, या पैसा पैसा पैसा था? आई थिंक मुझे पैसा पैसा ही सुनाई देता, कोई ऐसा ऐसा भी बोले, बट आई थिंक हम सबको पैसा ही सुनाई देता, राइट? जी हाँ, इसी के साथ ये जो है गाना वो है पुराना गाना, और इसको ऑफकोर्स जो है इस मूवी में लिया गया। इट्स ऑलरेडी अ वेरी फेमस सॉन्ग, और इस गाने को पहले ही बहुत ज्यादा प्यार मिल चुका है। गुलाबी साड़ी यानी मतलब पिंक साड़ी में, वो जो गुलाबी कलर की जो साड़ी होती है ना, वो रानी कलर की, उसी की साड़ी की बात हो रही है, उसी रंग की साड़ी की। सो गाना जो है वो पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट है, और यहाँ पर इस मूवी में से लिया गया है। तो धमाल 4 देखने जाइए भाई, मैं तो इतना कहूंगी, जरूर देखने जाइए। इनफैक्ट अपने बच्चों के साथ जाइए, बिकॉज आपको हंसने को मिलेगा और आपको बहुत सारा एडवेंचर भी देखने को मिलेगा, एंड इट्स गोना बी अ गुड टाइम फॉर योर फैमिली। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, और 8वें नंबर का गाना आपके लिए प्ले करने का टाइम हो गया है, जिसका नाम है जब तलक, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। जी हाँ, नाउ कॉकटेल मूवी का सबसे पहला गाना आया ही ये था, कॉकटेल 2 रिलीज हो चुकी है, अभी भी लगी हुई है ऑलरेडी थिएटर्स में, और यहां पर आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसमें शाहिद कपूर है, इसमें ऑफकोर्स कृति सैनन है, इसमें रश्मिका मदाना है। आपको थोड़ा रेज बेटेड फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा स्टोरी क्या है, क्यों है, बता देंगे। इसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा खतरनाक है, हॉट लोग हैं, सो आई थिंक इट्स अ पैसा वसूल। जी हाँ, सो ये मूवी देखिए, और अगेन ट्रेलर देख के जाइए, अगर आपका मन करेगा तो ही देखिएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्टोरी वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट इसमें अच्छे एक्टर्स हैं तो उनके लिए देखने जाइएगा। इसी के साथ उसी मूवी का ये गाना जो कि सबसे पहले रिलीज किया गया था, जब तक।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, पिछले वीकेंड मैंने आपको एक नया रिचुअल शुरू करने के लिए कहा था, जो कि आप ऑलरेडी करते हो, बस उसमें थोड़ा अच्छा जो है वो एक मजेदार सा जो है वो कुछ करने के लिए मैंने कहा था। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर ब्रेकफास्ट। सो मैंने कहा था अपने वीकेंड की शुरुआत करने के लिए आप बहुत सारी चीजें करते होंगे, लेकिन खाने के मामले में एक अच्छा सा रिचुअल शुरू करिए कि आप कुछ अच्छा सा यमी सा बना के, कुछ डिफरेंट सा आप खाइए, मतलब कुछ नया बना के खाइए। या ट्राई इट ऑन वीकेंड्स। आप लोग ये तो नहीं बोलने वाले कि निव्या शर्मा, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। वेल, यू नो व्हाट, योर आज निव्या इज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो कि एक्सपेरिमेंट से डर लगता है जिसको। बट द थिंग इज कि अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं भी करना चाहते तो कुछ अच्छा बनाइए और फिर खाइए। बेसिकली शुरुआत होनी चाहिए सैटरडे मॉर्निंग की कुछ अच्छा खाने के साथ। इट कैन बी पराठास, इट कैन बी डोसास, इट कैन बी पैनकेक्स, मतलब वट एवर यू लाइक, जो कि आप इजिली नहीं बना पाते हो, आपको टाइम की जरूरत होती है, वो टाइम आपको वीकेंड पे मिलता है। तो वो रिचुअल मैंने शुरू करने के लिए आपको कहा था। आई होप आपने उसे शुरू किया है। जी हाँ, इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ, जो कि है गिनी विद सनी 2 का गाना। ना ये गाना जो है वो बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये गाना जो है वो हमारी लिस्ट में आके चला गया था, फिर से आ गया है, क्योंकि इसे सोनू निगम ने गाया है। जी हाँ, अब सोनू निगम कितने प्यारे गाने गाते हैं उसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एंड वी आर काइंड ऑफ लकी कि हमारी एज में सोनू निगम है, क्योंकि हमारे पास भी कोई सिंगर तो होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर सके। यू नो व्हाट, हम सोनू निगम के टाइम के हैं। जी हाँ, इसी के साथ ये गाना है तुम पे ही प्यार आ गया, गिनी विद सनी 2 का। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो यू कैन चेक इट आउट ऑन Amazon Prime। इसी के साथ सुनते हैं इसका और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

अब आपको समझ आया ये गाना फिर से क्यों ट्रेंड कर रहा है? आई मीन सोनू निगम की आवाज, ऊपर से इतनी खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन, और ऊपर से ऐसे गाने ना मतलब बहुत सारे नहीं बनते आजकल, बहुत सारे अजीबो गरीब गाने बन रहे हैं जिनकी सेंस नहीं होती, मतलब कुछ और होता है, और आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। बट द थिंग इज कि अभी भी कुछ गाने हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो अच्छे गाने बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है, एंड दे आर लाइक ओके ओके डोंट वरी, हम आपके लिए अच्छे गाने बनाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे गड़बड़ गाने बन रहे हैं पर हम उसकी पूर्ति करेंगे। सो अगेन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द गुड म्यूजिशियंस एंड ऑल द गुड सिंगर्स बिकॉज वी नीड यू। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर ये गाना आपने सुना, और अगला गाना जो है वो है जग से लाज, अगेन कॉकटेल 2 का गाना है, और इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि वो रेज बेट कर रहे हैं आपको। स्टोरी वाइज इट्स लैगिंग, बट केमिस्ट्री वाइज एंड हॉटनेस वाइज इट इज वेरी गुड मूवी, एंड यू नो व्हाट आई मीन। सो सुनते हैं गाना जिसका नाम है जग से लाज, और फिर मैं आपको सीधा बताने वाली हूँ कि आप क्या क्या इस वीकेंड देख सकते हो बाहर, अपने घरों के बाहर जाकर, अपने नजदीकी सिनेमा घरों के अंदर जाकर, अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर। सो सबसे पहले कॉकटेल 2 का जग से लाज सुनते हैं, और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी मूवी है वो।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निवा के साथ, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस वीकेंड देख पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉलीवुड मूवीज से। जी हाँ, तो बॉलीवुड मूवीज से मैं सबसे पहले कहूंगी कि दुल्हनिया ले आएगी, जो कि एक नई मूवी आई है, और इसमें है ऑफकोर्स टी सीरीज की मालकिन, जी हाँ वैनेसा मालकिन, ऑफकोर्स टी सीरीज के मालिक की बहन खुशहाली कुमार। अब आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा तुम खुशहाली कुमारी बोल देती तब भी हम समझ जाते, बट यू नो वो थोड़ा सा चटाका मटाका लगाना तो जरूरी होता है, राइट? सो खुशहाली कुमार है इसमें, महेश मांजरेकर है इसमें, पीयूष मिश्रा है इसमें, और ये मूवी का नाम है दुल्हनिया ले आएगी, मतलब दुल्हनिया ले जाएंगे, दूल्हा ले जाएंगे, दुल्हनिया ले आएगी, ये है गाना। जी हाँ, ये है मूवी का नाम। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि कैसी मूवी हो सकती है। ये कॉमेडी है, ड्रामा है, फैमिली है, और अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मतलब शादी करनी है, अब दूल्हा नहीं मिल रहा है लेकिन दूल्हा कहीं से किडनैप करके लाएंगे, कुछ मतलब बेसिकली बहुत कुछ चल रहा है, बट आप ट्रेलर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं। पिछले हफ्ते की मूवीज के बारे में बात करूं तो धमाल 4 जो है वो लगी हुई है, इसको मैं पहले ही रेकमेंड कर चुकी हूं कि अगर आपको कोई मूवी देखने जाना है देन इट शुड बी धमाल 4, बिकॉज इट्स अ फन मूवी, इट्स अ फैमिली मूवी, एंड यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, गो फॉर इट, लेट मी नो आपको कैसी लगी। जी हाँ, इसी के साथ कॉकटेल 2 भी लगी हुई है और आप वो भी देख सकते हो। इसी के साथ नागा बंधम द सीक्रेट ट्रेजर ये भी लगी हुई है, इट्स अ फैंटेसी मूवी, इट्स अ एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर, सब कुछ आपको सर्व होने वाला है, और ये साउथ इंडियन मूवी है, सो यू कैन इमेजिन सम गुड CGI ऑल्सो, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड CGI ऑल्सो। जी हाँ, इसी के साथ ये सारी की सारी मूवीज जो है वो लगी हुई हैं, और अब जरा चलते हैं सीधा किस और, सोचिए, ऑफ कोर्स हमारी हॉलीवुड मूवीज की तरफ। तो सबसे पहले तो रिकमेंडेशन है द ओडिसी, मतलब ये मूवी तो रेकमेंड करनी पड़ेगी, मैं पहले ही इसका रिव्यू कर चुकी हूं। ये मूवी जो है वो क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है, और इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि इसमें मिलेंगे आपको कौन कौन। वेल ऑफ कोर्स इसमें आपको मैट डेमन मिलेंगे द ओडिसी के कैरेक्टर में, इसमें आपको टॉम हॉलैंड मिलेंगे, इसमें आपको एन हाथवे मिलेंगी, इसमें आपको लुपिटा नियांग, चार्लीज थ्रोन और जेंडेया भी मिलने वाले, बेसिकली बहुत सारे लोग, रॉबर्ट पैटिंसन भी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और ये मूवी जो है वो बहुत ज्यादा हिट हो गई है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ से ऊपर चली गई है, 400 करोड़ के करीब, ओह 400 करोड़ नहीं, सॉरी करोड़ निकल जाता है गलती से मुंह से, लेकिन करोड़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, $400 मिलियन जो है वो कमा चुकी है ऑलमोस्ट मूवी, सो यू कैन ओनली इमेजिन कि कहां पर ये मूवी जो है वो जा रही है। इसी के साथ कुछ और मूवीज हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूं, जो आप देख सकते हैं इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और गाना जो कि है 5वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।
5: और जब

जी दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, क्योंकि इट्स वीकेंड और हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी मूवीज आप इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमाघरों में यानी कि थिएटर्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताई कुछ बॉलीवुड मूवीज के बारे में, लेकिन एक और मूवी है जो कि आप देख सकते हैं और वो है अल्फा। या जी हाँ, अल्फा मतलब कि वो अल्फा मेल वाला नहीं, यहाँ पे अल्फा फीमेल वाला आपको मिलने वाला है, क्योंकि आलिया भट्ट एंड शर्वरी बाग बहुत ही जबरदस्त एक्शन करती हुई नजर आ रही है और इसमें साथ में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी हैं। सो आप इस मूवी को देख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं आपको ये कैसे

गो फॉर इट, लेट मी नो। इसी के साथ मैंने आपको कहा था कैसे आप देख सकते हैं द ओडिसी। अब एक हॉरर मूवी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि आप देख सकते हैं, और उसका नाम है इविल डेड बर्न। जी हाँ, आप लोग बोलोगे ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रही है। वेल, सुनने में नहीं है, देखने में भी खतरनाक लगने वाली है। सो अगर आप गॉथिक और हॉरर मूवीज के फैन हैं, एंड इफ यू लाइक द जॉनर, गो फॉर इट, लेट मी नो आपको कैसी लगी। जी हाँ, और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन भी आप देख सकते हैं। इट्स अ एनिमेटेड मूवी ऑफकोर्स, एंड आप इसको देख के भी मुझे बता सकते हैं आपको कैसी लगी। मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स भी लगी हुई है कुछ थिएटर्स में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उतरने वाली है, सो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। टेक योर किड्स, गो फॉर इट, एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। प्लस मोआना भी आप देख सकते हैं, और इसमें आपको ड्वेन जॉनसन मिलने वाले हैं, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट टू। ये सारी की सारी मूवीज आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं। मुझे बताइए आपकी चॉइस क्या है, और कौन सी मूवी आप चूज करने वाले हो इस वीकेंड देखने के लिए। और इसी के साथ अगला गाना आप सबके लिए, यानी कि चौथे नंबर का गाना, जो कि है बंधु 2.0। भाई आपको मान लेना चाहिए कि इस मूवी को नहीं, बल्कि इस लिस्ट को जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं कॉकटेल 2 के गाने। सो बंधु 2.0 आप सबके लिए।

करते हैं और ये गाना तो आपने सुन लिया, आप जाते हैं सीधा अल्फा के गाने की तरफ। वेल अल्फा जो है वो शर्वरी बाघ और आलिया भट्ट की मूवी है और उसी मूवी का एक गाना है जिसका नाम है मैसेकर। जी हाँ, आप लोग बोलोगे ओ माय गॉड गाने का नाम ही खतरनाक है, तो मूवी क्या खतरनाक होगी? वेल वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मूवी देखोगे, क्योंकि थिएटर से उतर जाए उससे पहले देख लीजिए और मुझे भी बता दीजिए आपको कैसी लगी मूवी। गाने का नाम है मैसेकर और ये आपको एकदम मतलब वाइबी वाइब में ले जाएगा। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा मतलब ट्राई टू बी प्रिसाइज बिकॉज व्हाट इज दिस वाइबी वाइब, वेल यू नो व्हाट आई मीन, यू नो। जी हाँ, सुनते हैं इस गाने को और फिर सीधा नंबर 2 गाने की तरफ जाने वाले हैं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: जो दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और हम मस्ती कर रहे हैं, हम डांस भी कर रहे हैं, हम थोड़ा गा भी रहे हैं, बट हाँ, मतलब वही गाइएगा जो अच्छा गाते हैं, मेरी तरह जो गाते हैं वो मत गाइएगा। जी हाँ, इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं नंबर 2 सॉन्ग के पर, मतलब नंबर 2 सॉन्ग पर। और नंबर 2 सॉन्ग है मस्कारा। अब थोड़ा अपनी आंखों में भी लगा लीजिए और थोड़ा सुन भी लीजिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं बात बनेगी, राइट? मतलब मस्कारा की बात हो रही है तो आंखों में लगाना तो बनता है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट मस्कारा इज, आई एम टॉकिंग टू गाइज, कि अगर आपको नहीं पता है कि मस्कारा क्या है, तो उसे अपनी आई लैशेज को लगाया जाता है। आई लैशेज पर लगाकर आई लैशेज को बहुत ही ज्यादा एकदम थिक किया जाता है, घना किया जाता है, उसी को मस्कारा कहते हैं। सो थोड़ा सा लगा लीजिए मेरी ऑल द फीमेल लिसनर्स, और थोड़ा सा सुन लीजिए मस्कारा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा, क्योंकि ये गाना बेहद खूबसूरत है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब नंबर वन गाने का वक्त हो गया है। और नंबर वन गाना फिर से कॉकटेल टू का माशूका। ना ना ना ना ना, अच्छा चलिए ठीक है, नहीं गाऊंगी। बात यह है कि माशूका जो है वो इतना टेम्पटिंग गाना है कि आपको ऐसा लगेगा कहाँ है वो मेरी क्लासेस, वो जो क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी, किस चीज की? सालसा की। जी हाँ, जब आप सालसा करते हैं यू फील गुड, यू फील हॉट, यू फील अट्रैक्टिव, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव डांस फॉर्म, बट द थिंग इज कि इसको करने के लिए कुछ ही गाने बने होते हैं। और माशूका अब हमें बॉलीवुड ने एक ऐसा गाना दिया है जिस पर आप खुलकर जमकर सालसा कर सकते हो। सो इफ यू आर अ सालसा फैन, डू इट ऑन माशूका एंड लेट मी नो कैसा लगा आपको। जी हाँ, एंड माशूका गाना आपको इन जनरल कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को इवनिंग वाइब में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? वेल, मजे करने हैं और मतलब यार बल्ले बल्ले करनी है और क्या करना है। जी हाँ, सो इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी, क्योंकि रेडियो ब्रिजवाणी पे हम एकदम सुनिश्चित करते हैं आपका एंटरटेनमेंट और एंटरटेन होने का हक तो सबको है। सो बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं आपसे मंडे को।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

सिर्फ तुम्हें चाहता हूं।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।